चीजों ने रुलाया, जिन तीन चीजों ने मुझे हंसाया है, पहला वो शख्स जो दुनिया की उम्मीद रख के बैठा है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा जबकि मौत उसकी तलबगार है, दूसरा वो शख्स जो गाफिल है और उससे गफलत नहीं बरती जाएगी यानी उसको इंसाफ देना है, तीसरा वो शख्स जो मुंह भर के मुंह खोल के हंसता रहता है जबकि उसकी ये पता नहीं कि उसका रब उससे राजी है और उससे नाराज है, और तीन चीज़ों ने मुझे रुलाया है, फिराकुल अहिब्बत मुहम्मदुन व हिज़्बह, प्यारों की जुदाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जो जुदाई ने मुझे रुलाया है, और मौत के वक्त मौत की हुलनाकियों ने मुझे रुलाया है, और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला के सामने हिसाब को जब खड़ा कर दिया जाऊँगा उस वक्त ने मुझे रुलाया है, उस वक्त मैं क्या करूँगा। जिस दिन कोई भी चीज़ छुपी नहीं होगी अल्लाह ताला से, और यह भी नहीं पता होगा कि जन्नत की तरफ जाना है दोज़ा की तरफ जाना है, ये कौन कह रहा है? मेरे भैया सादातुल औलिया सैयदना अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी मरूफ सहाबी हैं, और इमाम बैहक़ी ने अज़्ज़ुहद में सफ़र नंबर 233 में सैयद अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं, नकल करते हैं, ए आदम की औलाद अपने कदम ज़मीन पर रखो क्योंकि अन करीब ये तुम्हारी कब्र बनने वाली है, ए आदम की औलाद तुम सारे के सारे चंद दिन हो, अगर तुम्हारा बाद अगर तुम्हारे बाद दिन चले जाते हैं तो तुम्हारी बाद ज़िंदगी चली जाती है, और जब से तुम अपनी माँ के पेट से निकले हो तुम्हारे खात्मे के दिन उस दिन से शुरू हो गए हैं। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स जितना कोई शख्स मौत का जिक्र ज़्यादा करता है उतना ही उसकी फिक्र उसके अमल में नज़र आती है, और जितना कोई शख्स दुनिया से उम्मीद लगा कर बैठता है उतनी ही वो बुरे अमल करता रहता है, तराजू है, जो नेक अमल करते रहते हैं ऐसे शख्स अल्लाह से डरने वाला है और इसके दिन फिक्र आखरत है, और जो बेपरवाह लोग हैं नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, बाजमात पढ़नी है घर में पढ़नी है, कज़ा पढ़नी है नहीं पढ़नी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, ये सुअल अमल है, वजह क्या है, इसे आखरत की फिक्र नहीं है इसे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ज़ुहद में सफ़र में 236 में रिवायत किया है। चंद अमल मिसालें देखते हैं, सबकुन अव्वलून, बेहतरीन तीन ज़माने को लोगों ने क्यों सबकत ले ली है, सैयद बकर सदीक अन्हु ने आखिरत के लिए अपना सारा माल अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम कदमों में रख दिया, सैयद उमर खत्ताब ने आधा माल, बड़ा प्यारा किस्सा है, इसे इमाम तिर्मिज़ी जामिउ तिर्मिज़ी में रिवायत किया है, अल्लामा इब्न हसन फरमाते हैं कि एक बार सैयद उमर खत्ताब अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदका दो अल्लाह के रास्ते में, तो मैं घर गया और मेरे जहन में यह बात थी कि आज मैं अबूबकर से सबकत ले जाऊँगा, आगे निकल जाऊँगा मैं, और जो भी मेरा माल था आधा माल उठा के ले आया मैं, और अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर होकर कदम में रख दिया, थोड़ी और देखते रहा अबूबकर सिद्दीक कहाँ पर है, यानी आँखें उस तरफ थी मेरी कि आज मैं सबकत ले गया आगे निकल गया, थोड़ी देर के बाद अबूबकर सिद्दीक कुछ माल ले के आए रख दिया, तो अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल किया, ए उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, तो फरमाते मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना माल और छोड़ के आया हो, यानी आधा माल लेके आधा छोड़ के आया हूँ, अबू बकर तू क्या छोड़ के आया है, फरमाते हैं अल्लाह व रसूल हो, कुछ नहीं छोड़ के आया हूँ मैं, अल्लाह के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह के रास्ते में। सवाल यह है कि हमने अपनी आखरत के लिए अपनी आखरत को बेहतर बनाने के लिए कितना माल खर्च किया है आज तक। दूसरी मिसाल ले लें, और मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ यानी फ़िक्र आखरत किस तरीके से सहाबा कराम के दिलों में बस चुकी थी। एक बार सैयदना बकर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे बड़े अरसे के बाद, आप जानते असहाब सुफ़ा में से थे फ़कीर थे, तो एक ऐसा वक्त भी जो माल गनीमत मिला बाद में, तो खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे कत्तान से लिनन जिसे कहते हैं, और उन्हें जैसे कि बलगम आते तो वो अपने कपड़े से यूँ निकाल के साफ़ किया, फिर कहते बहुत खूब अबू हुरैरा, अपना मुहासबा करते हैं बहुत खूब अबू हुरैरा, तुम पर ऐसा वक्त भी गुजरा था किसी दिन जब तुम
مدینہ کی